कलम और तेरी तस्वीर रख देना मेरी कब्र के पास। हाँ, मेरे मरने के बाद मेरी बस इतनी सी खुराक होगी।